0: मेरा प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला,
1: मेरा प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला,
0: मेरा प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला,
1: मेरा प्रभु राधे श्याम।